ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 जुलाई 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, पर उससे पहले आइए आपको दे दे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का एक छोटा सा विवरण। 6:02 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम सुप्रभात। 7 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 7:02 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल्ली गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। 9 बजे हिंदी में मुख्य समाचार। 9:02 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा दिल के तराने गाने नए पुराने। 10 बजे अंग्रेजी में मुख्य समाचार। 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित कार्यक्रम मैचलेस म्यूजिक आर। 10:55 पर सुनिएगा कार्यक्रम मन की बात। 12 बजे अंग्रेजी में मुख्य समाचार और 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम प्ले इट कूल।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने

0: संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों के

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी

0: में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा सम्पन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJPA के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJPA ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJPA ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वही नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वहीं हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। CJPA withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
6: खाता हुआ एक्टिव।
1: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज

यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से गाद निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। PV सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने

हर देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहां के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते। इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए।
गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को

को बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगु देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है, हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगु भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो, या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भलीभांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया, बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था, आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे, स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में वर्षों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ मां के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए

हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश

नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है। पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है। बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा।
2: Listeners, now we'll be listening to Mann Ki Baat Nagamis version.
3: Moilaga pyare deshvasiyo, apni khan sobke namaskar. Ami khan laga jivande, kunba enika darek kan thaki ase, kunke yaad koribole calendar de sabole na lage. Aji mane 26th July din hi, itu nishna ekda din thaki ase, aji to hoile Kargil Vijay Diwas din thaki ase. ইটু দিন দিয়ে আমি কানি প্রায় পড়া মন পর্থা করে দিয়া লাগা একটা দিন থাকি আছে আমার দেশ লাগা বাহাদুর সিপাহী কান লাগা এক্সট্রা অর্ডিনারি কারেজকে ইটু দিন দে ইয়াদ করে দি থাকি আছে ইমান উজা বাহার দে কথারনাক ওয়েদার দে ইমান ডাঙর চ্যালেঞ্জেস খান থাকিলিবি তাই কানি আমার দেশ কারণে তাইখান লাগা সব দি কিনা মাদার ইন্ডিয়াকে বাজাই কিনা রাখা লাগা আমি খান সবই ইদু দিন দে ইয়াদ দিলাই দি আছে আজি ইদু কার্গিল বিজয় দিবস দিন দে মই আমার দেশ লাগা সব বাহাদুর সিপাহী কানগে মই লাগা মাতা নিচু করে দি কিনা সম্মান করে দি আছে সাদি ভাই কান আজি আমার দেশ ইন্ডিয়া হি ইটু হিরোস কানগে খালি ইয়াদ করে আহি নয় কিনা তাই খান লাগা সাগা নতুন জেনারেশনস কানগে বি লয় যাই কিনা দি থাকি আছে ইটুই সেন্টিমেন্ট লৈকিনা ইটো চাল একটা খাস শৌর্যা বিজয় যাত্রা মানে ভ্যালর আর ভিক্টরি জার্নিকে অর্গানাইজ করে দি থাকি আছে। জুলাই 14 তারিখতে দিল্লি লাগা ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল পৰা শুরু করে দিকিনা একটা মোটরসাইকেল র্যালি ট্রাস্টে কার্গিল ওয়ার মেমোরিয়াল তাক ওয়ান রাইট ওয়ান নেশন ওয়ান সেলিউট সন্দেশ লৈকিনা পুঞ্চি থাকি আছে। ইটো যাত্রা পৰাহি আমি খান সবকে জানাই দি আছে কে আমার দেশ কারণে পালিতান করে দিয়া কেতিয়াবি নাপাহরিব বিলে সাদিবাই কান আজি ইটো সিপাহী কান লাগা খারেজ লগতে আমার দেশ ইন্ডিয়াহি লাগাতার আমার টেকনোলজিক্যাল ক্যাপেবিলিটিজকে মজবুত করে দিকা আহি থাকি আছে অলপ দিন।

दोपहर के 1 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके असाधारण शौर्य और बलिदान हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ICFT ने 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाले 97वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इक्वी के लिए प्रविष्टियां आधिकारिक तौर पर खोल दी हैं। आज कारगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अनाहत सिंह की जीत को असाधारण उपलब्धि बताया। भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना चुका है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

हर दोपहर आप करते हैं बेसब्री से इंतजार। इंतजार इसीलिए क्योंकि ये वो प्रोग्राम है जिसमें भाई हम आपके जज्बात आपके चाहने वालों तक पहुंचाते हैं, आपकी दिल की बातें गीतों के जरिए, नगमों के जरिए आपके अपनों तक पहुंचाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस घर पे बैठे और कोई काम ना हो, बस अपनी पसंद का संगीत सुनते रहे, तो बस ये प्रोग्राम वही ख्वाहिशात को पूरा करता है आपकी। प्रोग्राम का नाम है मेरे वाला सॉन्ग। मैं हूँ आपके साथ दीपांशी, लेकर आई हूँ वो प्रोग्राम जिसमें आज आपकी चाहत को हम करेंगे पूरा, आपकी पसंद को प्ले करेंगे यहाँ पर, जो भी आपकी पसंद हो। और पसंद को पूरा करवाने के लिए तो बहुत ही आसान सा काम करना है आपको, सिर्फ मैसेज पहुँचाना है हम तक। हमारा मैसेज जिस नंबर से हम तक पहुँचेगा, आपका मैसेज जिस नंबर से हमारे तक पहुँचेगा, वो नंबर है 9868107070, 9868107070। तो जब तक आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू होता है और आपके मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं, उससे पहले आज हम सभी, हर भारतवासी, हर भारतीय गौरवान्वित है ये सोचकर कि हम इस मिट्टी से जुड़े हैं, भारत देश से जुड़े हैं। और वो सैनिक जो सीमा पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे कठिन मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, उन सभी परिस्थितियों को भूलकर, अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर, बस सीमा पर इसीलिए तैनात रहते हैं कि हर देशवासी, हर भारतवासी अपने घर में आराम से सो सके, है ना। तो आज विजय कारगिल दिवस पर, कारगिल विजय दिवस पर, इस दिन हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत देश के लिए, हम सभी के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी शहीदी दी, उन सभी शहीदों को याद करते हुए, शायद हम जितना गौरव महसूस करते हैं ना, उतनी ही शायद हमारी आंखें भी भीग जाती हैं ये सोचकर कि उन शहीदों ने अपनी जान की परवाह किए बिना, ये सोचे बिना कि उनका घर परिवार भी है पीछे, बस अपना वो कर्तव्य निभाया जिससे आज हम सभी इस देश पे सुरक्षित हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। हम सभी की ओर से उन सभी शहीदों को, उन सभी अनगिनत सैनिकों को जो डटे हैं हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, हम सभी की ओर से उन सभी को सलाम।

कारगिल विजय दिवस के आज इस मौके पर उन सभी शौर्य वीरों को याद करते हुए, उनके उस अदम्य साहस को याद करते हुए, उनके उन सैक्रिफाइसेस को याद करते हुए, हम सभी का सलाम, हम सभी का सैल्यूट। और ये पहला गाना आज उन्हीं शौर्य वीरों के नाम

आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। मैं हूं आपके साथ दीपांशी और आपके मैसेजेस का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो चुका है। और जिन भी लिसनर्स ने अभी ट्यून इन किया है उन्हें एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, अपने मैसेजेस अपने संदेश हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9868107070 9868107070 है वो नंबर जो आपके मैसेजेस को हम तक पहुँचा देगा। तो पहला मैसेज जो ठीक 1 बजे पहुंचा हम तक, ये पहला मैसेज आया है सलीम अख्तर साहब का। रेशमा बेगम अलीगढ़ से जुड़े हमारे साथ और उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई। मनमोहन सिंह जुड़े हमारे साथ हसनपुर गांव से, 3 गानों की फरमाइश के साथ उन्होंने 3 गानों के बोल लिखकर हम तक पहुंचाए हैं कि इनमें से कोई भी गाना प्ले कर दिया जाए। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जुड़े हैं हमारे साथ और इनके सभी मित्रगण भी इनके साथ हैं, संजय, संदीप, अनिल जैन, राधा और दर्शन भाई, और इन्होंने भी कुछ गानों की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। सौरभ अनेजा जुड़े हमारे साथ गाजियाबाद से, लिखते हैं कि मेरे कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, बस मैं शो इंजॉय करता हूँ। जी हाँ, आप इतने समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अब हमें ये पता चल गया है कि आपकी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती, केवल प्रोग्राम आप एंजॉय करते हैं, तो एंजॉय द प्रोग्राम। कविता जुड़ी हमारे साथ गढ़वाल उत्तराखंड से और ये भी एक गाना सुनना चाहती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप अपना इतना ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचाते हैं, इतने मैसेजेस हम तक आते हैं, तो ये संभव नहीं है 1 घंटे के प्रोग्राम में कि इन सभी जो सॉन्ग्स हैं इनको प्ले किया जाए। तो आप अपने सॉन्ग की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते रहिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगर सॉन्ग प्ले ना भी हो तो आपका जो मैसेज है उसे मैं ज़रूर शामिल करूँ अपने इस कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमें कुलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा

मालवीय का आया है और इन्होंने भी एक गाने की जो पसंद है हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज हमें जम्मू कश्मीर से आया है, राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। तो चलिए राजू जी की फरमाइश और रानी जी की फरमाइश को करते हैं पूरा, ये गाना उनके साथ हम सभी इंजॉय करते हैं। आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी FM रेनबो में, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग।

0: आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दीपांशी, और हमारे जो भी लिसनर्स अभी अभी ट्यून इन जिन्होंने किया है रेडियो, तो उन्हें भी अपना नंबर बता दें ताकि वो भी अपनी जो फरमाइश है, अपने जज्बात है, हम तक पहुंचा सके। 9868107070। और ये मेरा प्रॉमिस हमेशा की तरह, अगर आपका गाना प्ले नहीं भी हुआ तो भी आई प्रॉमिस कि आपके जो मैसेजेस हैं उन्हें मैं ज़रूर शामिल करूंगी इस कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपने अगले मैसेज की ओर, और ये जो अगला मैसेज है ये प्रगति ने हम तक पहुँचाया है। प्रगति पटना से जुड़ी है हमारे साथ और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज जो आया है प्रगति के मैसेज के बाद, ये श्री रामपुर से आया है ये मैसेज, और पुणे से भी, और श्री रामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका जुड़े हमारे साथ, और पुणे से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। गाने की फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज हमें मिला है, नमस्कार मैडम, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, और एक गाने की फरमाइश उन्होंने पहुंचाई हम तक। आपका नाम है नीरज ध्यानी और कोटद्वार गढ़वाल से जुड़े हैं हमारे साथ। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है सतपाल वर्मा जी का पंजाब से, और ये तेरे नाम मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं और इसे डेडिकेट कर रहे हैं हम सभी आरजेएस को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डेडिकेशन, थैंक यू। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है, गुड आफ्टरनून, आप कैसी हैं, मैं बहुत अच्छी हूं। अफशा खानम जुड़ी है हमारे साथ धामपुर से, धामपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। थैंक यू वेरी मच अफशा, आई एम गुड, आप कैसी हैं, आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। अगला मैसेज इनका शायद मैसेज मुझसे मिस हुआ है, ये मैसेज हम तक पहुंचाया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से वरुण वार्ष्णेय ने, और इन्होंने कारगिल विजय दिवस की पर एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी वरुण आप तक आपका जो गाना है उसे प्ले करने की। फुरकान, मोहम्मद फुरकान जुड़े हमारे साथ कांड से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। शुक्लाल बाला वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं हमारे साथ, और इन्होंने भी गाने की फरमाइश पहुंचाई हम तक, और ये सभी उन शौर्य वीरों को, शहीदों को ये गाना जो है डेडिकेट करना चाहते हैं। पंकज जुड़े हैं अमरावती महाराष्ट्र से और लिखते हैं गुड आफ्टरनून पंकज जी, और इन्होंने कुछ गानों की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, और अभिनेता जुगल हंसराज जी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। चलिए आपकी शुभकामनाएं होप उन तक पहुंच जाए। अगला मैसेज हमें मिला है, गुड आफ्टरनून, मैं सुशैन निहारकर और उनकी फैमिली अश्विनी निहारकर विलेज लोअर डहांग अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हैं, इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ, ड्यूटी पर हूँ, और जब भी समय मिलता है तो दिल से सुनता हूँ और दोस्तों को सुनाता हूँ। बहुत खुश हूँ जो न्यूज़ ऑन एयर आप प्रोग्राम आप जो हमारे न्यूज़ ऑन एयर के ज़रिए जो प्रोग्राम है ये सुन पाते हैं, और फैमिली क्वार्टर्स पर भी ठीक सुनाई देता है, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। चलिए आपने आज ही फरमाइश हम तक पहुँचाई है, और आप डटे हैं सीमा पर हम सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए, मातृभूमि की सेवा में हैं वहाँ पर, और बस हम इतना सा काम तो कर ही सकते हैं। आपको हमारी ढेरों शुभकामनाओं के साथ ये प्यारा सा जो गाना है ये आपके लिए।
1: शाम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया।
2: क्या कहती हो शामू की माँ?
1: और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
2: माँ जानती हो बाबूजी ने सबसे ज्यादा प्यार किससे किया है? इस मुल्क से, इस देश से।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: कम बैक, आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ दीपांशी और बस कोशिश कर रही हूं कि आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें पूरा कर दिया जाए और आपके मैसेजेस जो हैं ढेरों मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं और ये प्रयास मेरा रहेगा कि आप सभी के मैसेज जो है कार्यक्रम में ज़रूर शामिल हो। अगला मैसेज हमें मिला है मोहम्मद इम्तियाज साहब का और ये कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। एक गाने की फरमाइश भी इन्होंने हम तक पहुँचाई है। अगला मैसेज जो मिला है ये है प्रदीप सलूजा जी जुड़े हैं जनकपुरी दिल्ली से और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज जो मिला है हमें सारिका जुड़ी हमारे साथ दिल्ली से और एक गाने की फरमाइश को लेकर प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगा दी है इन्होंने। और अगला मैसेज हमें सौरभ का आया है, इला एंड सौरभ, और ये दिल से मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं। भगवती जी जुड़ी हैं हमारे साथ, लिखती हैं नमस्कार, आपको भी नमस्कार, और इन्होंने भी कुछ गाने की फरमाइशें हम तक पहुंचाई हैं और कह रही हैं इनमें से कोई भी गाना जो है इनके लिए प्ले कर दिया जाए। कासगंज से राधे श्याम जुड़े हैं हमारे साथ और एक गाना हम तक पहुंचाया है इन्होंने, नमस्कार। अमित कुमार जुड़े हैं हमारे साथ और ये भी मेरठ से हैं और इन्होंने मेरठ से गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई। सुनीता शालीमार बाग से जुड़ी हैं और लिखती हैं कि दिलबर मूवी का एक गाना इन्हें सुना दिया जाए। सुनीता के बाद जो मैसेज आया है नवलू वरक गांव मलपण जिला उत्तर गोवा से जुड़े हैं और ये लिखते हैं कि फिल्म दिल तो पागल है का कोई भी गाना इन्हें सुना दिया जाए, गोवा में बारिश नहीं है। ओके, चलिए बारिश जरूर होगी गोवा में और दिल्ली में तो बारिश पहुंच गई है, आई होप वहाँ भी जल्दी से रिमझिम बादल बरस जाएं और जैसा दिल्ली का अभी मौसम थोड़ा सा सुहाना है।

शाम को तो हो ही जाता है, वैसा मौसम गोवा में भी जल्दी से हो जाए। मनमोहन सिंह जुड़े हमारे साथ यूपी रामपुर से, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। लिखते हैं, प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। दीपांशी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में देशभक्ति से उत्प्रोत गाने ने देशभक्ति के एहसास को जीवंत कर दिया है। सभी बहादुर सैनिकों को सलाम। ये मैसेज आया है रवि जोशी जी का मेरठ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस खूबसूरत मैसेज के लिए। अगला जो मैसेज आया है ये ग्रेटर नोएडा से आया है, और सुरोजीत जी, हाँ इनका नाम है सुरोजीत, और इन्होंने ये मैसेज हम तक पहुंचाया है ग्रेटर नोएडा से। लिखते हैं, पहले मैं कारगिल के उन वीरों को शत-शत नमन करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दी, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज हमें मिला है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। देखिए, सबके मैसेजेस और सबके नाम मैंने शामिल कर लिए हैं कार्यक्रम में। इनका एक मैसेज हम तक पहुंचा है गाने की फरमाइश के साथ। ये जो इनका नाम, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, इन्होंने एक मैसेज हम तक पहुंचाया है। बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश भी पहुंचाई है। और अगला ये जो मैसेज है ये पहुंचा है हमें उत्तम नगर से, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, और ये लिखते हैं, खुश नसीब हैं वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मरकर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ उन्हें सलाम, ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में तिरंगे का नसीब बसता है। और ये मैसेज हम तक पहुँचाया है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु ने, और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। चलिए, आपने लिखा है फिल्म पूरब और पश्चिम फिल्म का एक गाना सुना दिया जाए। चलिए, पूरब और पश्चिम का एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, और साथ में हम सभी इस गाने को एंजॉय करते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ जुड़े हैं आप प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ दीपांशी और आपके प्यार भरे जो संदेश हैं इन्हें पढ़ रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि इतना ढेर सारा प्यार भेजते हैं आप, इन संदेशों के माध्यम से हम तक पहुँचाते हैं, कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ ऐसे लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी रेडियो ट्यून इन किया है, तो उन्हें भी बता दें यदि आप भी हम तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो आपको अपना संदेश, अपना जो भी आज नगमा कोई भी गीत सुनना चाहते हैं तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9868107070986810707070। अगला मैसेज हम तक पहुँचा है, ये छत्तीसगढ़ से पहुंचा है और कबीर देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार, डॉली बेबी पूजा और राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर, ये जुड़े हैं हमारे साथ एक गाने की फरमाइश लिए। अगला मैसेज जो हमें पहुंचा है वो आया है, ये जुड़े हैं हमारे साथ सहजपुर लोहारा दनियाखुर जिला, गुनीराम राजपूत, संतोषी हेमप्रभा, पुष्पराज, सूरज राजपूत, ये जुड़े हैं हमारे साथ, गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है इन्होंने। और अगला मैसेज जो है ये आया है पोटिया कला दुर्ग से, संजय, सुजाता, शशांक, सीमा, ये जुड़े गाने की फरमाइश लेकर। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हम तक सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु, इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। ये आया है नागपुर महाराष्ट्र से कमल, पिंकी साहनी और डॉक्टर अफसल मलिक का मैसेज आया है और रामगढ़ कैंट झारखंड से जुड़े हैं निप्पी साहनी और सुनीता साहनी और लिखते हैं कोई भी गाना सुनवा दिया जाए। और कोलार रोड भोपाल से राम बाबू मालवीय, मनीषा मालवीय और इन्होंने एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई और लिखते हैं कि बारिश के हिसाब से कोई गाना मिल जाए तो ज़रूर प्ले कर दिया जाए। और मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा साहब, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप कालका से, शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिटा बजाज, ये सभी जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, मैं लखीमपुर खीरी से हूँ, मेरा नाम चंद्रसेन भारती है और लिखते हैं कि मेरी पत्नी का नाम ऋतिका शुक्ला है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और मेरी पत्नी आपके कार्यक्रम हमेशा सुनते रहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है, लिखते हैं कि प्लीज़ गाना बजा दिया जाए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी इस फरमाइश को पूरा करने की। ये जो मैसेज हमें मिला है, विजय, रेणुका, ऋषिकेश और जयश्री शेगोकार का, और ये मैसेज हम तक पहुंचा कहाँ से है, पलसी जिला बुलडाणा से पहुंचा है ये मैसेज, तामसा रोड हदगांव महाराष्ट्र से ओम, आम्रपाली, अनामिका, प्रणेता और आविष्कार जुड़े हैं हमारे साथ। और ये मैसेज आया है हितेंद्र दास असम से जुड़े हैं और लिखते हैं कि कोई भी जो गाना है सुना दिया जाए, बस इनका नाम पढ़ दिया जाए। चलिए हितेंद्र दास साहब, आपका जो मैसेज हमने बिल्कुल शामिल कर लिया है अपने कार्यक्रम में। फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून जुड़े हैं हमारे साथ मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। मिहिर नगर उमेरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत

सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश और लाडला टुक टुक, ये नाम इन्होंने भेजे हैं और ये जुड़े हैं हमारे साथ और गाने को गाना गाने की फरमाइश भी पहुंचाई और साथ में प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय जुड़े हैं हमारे साथ, साथ में ममता और बेबी किट्टू भी गाना सुन रही हैं और ये आपने गाने की फरमाइश पहुँचा दी है दोस्त। अपना प्यारा सा नाम नहीं लिखा है, मैं आपका नाम कैसे शामिल करूँ अपने कार्यक्रम में। मैडम जी आदाब, हमारे देश के सभी सोल्जर्स को इन्होंने सलाम भेजा है। हमें गर्व है अपने देश के सभी उन सोल्जर्स पर, आर्मी पर, जो इस सर्दी गर्मी आधी तूफान तेज धूप में अपना जो काम है उसके लिए खड़े रहते हैं हमेशा और अपनी जान की परवाह किए बगैर वहाँ पर हमारी जो है रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। दिल से सैल्यूट। ये हमको भेजा है शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैज़ान, अनु खान, उस्मान करीम अंसारी ने। और अगला ये जो मैसेज है ये प्रमिला कर्नाटका से जुड़ी हमारे साथ, उन्होंने पहुंचाया हम तक। ये मैसेज आया है पवन कसेरा जी का, राजगढ़ मध्य प्रदेश से। रिंकू जुड़े हमारे साथ गांव खड़कुना बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से और कहते हैं गाना इन्हें सुना दिया जाए। जीत पाल ये शिवाजी नगर से जुड़े हैं और राजेश सेन और सुरेखा सेन भी गाना सुन रहे हैं। ये हैं पिपरिया का से कमलकांत गुप्ता गुप्ता और श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता और ये जुड़े हैं हमारे साथ और इन्होंने कोई गाने की फरमाइश नहीं पहुंचाई है, केवल अपना नाम लिखकर भेजा है। धनौरी देलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया, आयान बाबू ये भी हमारे साथ जुड़े हैं और अपने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। एक गाने की फरमाइश हमें एक हमारे लिसनर ने पहुंचाई, आइए उनका गाना प्ले करते हैं और तब तक मैं उनका वो नाम ढूंढ लेती हूँ क्योंकि इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं कि शायद उनका नाम जो है ना थोड़ा सा पीछे चला गया है। आइए आप गाने को एंजॉय कीजिए और मैं उनका नाम जल्दी से ढूंढ कर अनाउंस करती हूँ।

0: को थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर। एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: आप सब जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग और मैं हूं आपके साथ दीपांशी। बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं, जल्दी से आपके मैसेजेस जो हैं पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बहुत अधिक नहीं है। अगला ये जो मैसेज हम तक पहुंचाया है, ये मैसेज राजेश सेन और सुरेखा सेन जी का, और ये इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका प्रोग्राम। शिवम कुमार पटना बिहार से जुड़े हैं और इन्होंने भी एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट पहुंचाई है हम तक। और आपने जो मैसेज लिखा है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ऑन एयर आपका मैसेज इस तरह से, जिस तरह से आपने लिखकर भेजा है ना, सॉरी शिवम जी, मैं पढ़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन आपका नाम ज़रूर शामिल कर दिया है मैंने इस प्रोग्राम में। विजय कुमार कामत शालीमार बाग से जुड़े हैं और गानों को इंजॉय कर रहे हैं। सोलापुर महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बनसोड़े सोनाली श्रवण जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। और अगला मैसेज जो हम तक पहुँचा है ये आया है हमें मुताला महाराष्ट्र से विजय रत्नामाला और गौरी सुलरकर का। और ये अगला जो मैसेज है ये उन्होंने बहुत एक लंबा सा मैसेज भेजा है चंडीगढ़ मोहाली से, मोहाली चंडीगढ़ से ये मैसेज हम तक TD मल्होत्रा साहब ने भेजा है एक मैसेज। ये मैसेज अगला

आया है सनावत जिला खरगोन मध्य प्रदेश से, हुकम चंद, पिंटू सेन, हरी निवास खड़े, बाबूलाल चौधरी, दीपक सचिन कटारिया जी का। और अगला ये मैसेज बागेश्वर निषाद गोरखपुर यूपी से जुड़े हैं हमारे साथ। ये जो मैसेज पहुंचा है हमें, ये आया है यूपी रामपुर ज़िला, ये मनमोहन सिंह जी का मैसेज है। और ये जो मैसेज है, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी जुड़ी हमारे साथ शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला मैसेज विक्रम, सचिन, सतीश, योगेश जी का मिला है हमें हनुमानगढ़ राजस्थान से, और एक गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हमारे साथ। शुभ दोपहर दीपांशी जी, अमरदीप कुमार, कोपमपट्टी, तमिलनाडु से पहुंचा है ये मैसेज हम तक, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। और ये अगला मैसेज, आपका मैसेज मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रही हूँ, आपका मैसेज हम तक पहुँच गया है वीरू बख्शी जी, लेकिन आपका मैसेज मुझे क्लियर नहीं आया है। मोनू पराशर अलीपुर दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ, और इन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। अगला ये जो मैसेज हमें मिला है, ये अनुजा शर्मा मेरठ से जुड़ी हैं और लिखती हैं कि मेरा मैसेज आप शामिल नहीं करते हैं। लीजिए अनुजा जी, नाराज़ नहीं हुई है, आपका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। कविता देव भूमि उत्तराखंड से जुड़ी हमारे साथ, और अगला मैसेज जो मिला है हमें, इनका मैसेज हमने शामिल कर लिया है। हनु एंड आनंद मिश्रा जी बलरामपुर से जुड़े हैं हमारे साथ, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। सुनील सामग सिडको संभाजी नगर महाराष्ट्र से जुड़े हैं, लिखते कोई भी जो गाना है प्ले कर दिया जाए इनके लिए। और अगला ये मैसेज, मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, बस कोशिश ये है कि आप सभी के मैसेजेस जो इतने प्यार भरे संदेश हम तक पहुँचे हैं ना, वो सभी मैसेजेस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। कंचन सोनिया जुड़ी हैं हमारे, सोनिया विहार से कंचन जुड़ी है हमारे साथ एक गाने की फरमाइश लेकर, और इन जनाब का नाम राहत और गजल, ये बिजनौर से जुड़े हैं हमारे साथ, मिल गया आपका नाम। अनिल ठाकुर, रीना ठाकुर जुड़े हैं हमारे साथ, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। रामधारी अवाना जी जुड़े हैं हमारे साथ, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। अगला जो मैसेज आया है भिवाड़ी राजस्थान से ललिता जी का आया है, और एक और मैसेज है एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद, आकिल और बेबी अरीबा हबीबा, इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। और एम ताहिर बड़ापुर बिजनौर यूपी से, और अब जो आखिरी गाना अभी मैं प्ले करने वाली हूँ एक खास शख्स के लिए है, उनका मैसेज भी हम तक पहुँचा है। ये जो गाना है ये ऋतु के लिए है, अब कुछ दिन के बाद अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं, तो तहे दिल से ढेरों शुभकामनाएं ऋतु को, और आई एम श्योर जहाँ भी जाएंगी, ऐसा मैसेज में लिखा है कि जहाँ भी आप जाओगे, जो भी आप काम करोगे, आपको बहुत ढेर सारी सक्सेस मिले और ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारे प्यार के साथ। उनकी एक दोस्त ने उनका उन तक ये मैसेज पहुंचाया है और लिखा है कि नाम वो अपने आप गैस कर लें, और आई एम श्योर अगर रितु इस कार्यक्रम को सुन रही है, प्रोग्राम को सुन रही है, तो ये जो नाम है वो गैस कर लेंगी। तो ढेरों शुभकामनाओं के साथ रितु, आपके लिए ये गाना।

एक ही मैसेज हम तक पहुंचा है, लिखते हैं कि गीत ना सही नाम ही शामिल कर लीजिए, ये बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का हम तक पहुंचा है। और ये एक मैसेज ममता जी का पहुंचा है, उन्होंने गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। और आपके इन सभी प्यार मैसेजेस, प्यार भरे मैसेजेस के साथ अब आपसे इजाज़त देने का वक्त है। जाना इसलिए है क्योंकि एक बार आपसे फिर से मिलने के लिए आना है। मैं फिर आऊँगी आपसे मिलने के लिए, आपको छोड़कर, इन गुनगुनाती गलियों को छोड़कर और कहाँ जाएंगे। लेकिन आप रखेंगे अपना बहुत अच्छे से ध्यान और मैं फिर आपको यहीं पर मिलूंगी। राजेश आ चुके हैं लेकर कार्यक्रम आशियाना, रहेंगे आपके साथ। और आप भी जुड़े रहिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो के प्रोग्राम को, इसी तरह से इंजॉय करते रहिए। टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के अवसर पर वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनके असाधारण शौर्य और बलिदान हर भारतीय को गौरवान्वित करता है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौटी। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने आज सुबह अपने समुद्री क्षेत्र के आसपास चीन के 4 सैन्य विमान, 7 नौसैनिक पोत और 3 सरकारी पोतों के गश्त लगाने का दावा किया है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पिछले 24 घंटे में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 2 बच्चों सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और 20 अन्य घायल हैं। आज करगिल विजय दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी, आप FM रेनबो सुन रहे हैं दिल से दिल तक, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है छोटे उस्ताद। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरुआत में ही हम आज के इस खास दिन को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि आज है कारगिल विजय दिवस, हम मना रहे हैं, और ये दिन बहुत ही खास है। भारत के उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को नमन करने का दिन है, जिन्होंने सन 1999 में कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर देश की रक्षा करते हुए विजय हासिल की। विपरीत परिस्थितियों, बर्फीली चोटियों और दुश्मन की गोलियों के बीच हमारे जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और तिरंगे की आन बान और शान को सबसे ऊपर रखा। ये दिन हमें याद दिलाता है कि देश की सीमाओं की रक्षा केवल हथियारों से नहीं, बल्कि साहस, समर्पण और बलिदान से होती है। तो कारगिल के वीरों को

केवल सीमाओं पर नहीं बनता, वो बनता है हर उस जगह जहां कोई अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है। आज हमारे बच्चे भी एक ऐसे ही भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है। तो सवाल है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 10 या 15 साल बाद दुनिया कैसी होगी? हो सकता है कुछ ऐसे काम होंगे जो आज मौजूद नहीं है, और कुछ ऐसे काम होंगे जिन्हें मशीनें करने लगेंगी। लेकिन एक चीज जो कभी नहीं बदलेगी, और वो है इंसान की सीखने, सोचने और कुछ नया करते रहने की क्षमता। इसलिए भविष्य के लिए सिर्फ किताबों का ज्ञान ही जरूरी नहीं है, बल्कि कुछ खास स्किल सीखना भी है बहुत जरूरी। जैसे दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक चुनौतियों के बावजूद अपनी जिज्ञासा और सोचने की क्षमता से पूरी दुनिया को ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराया। यही सीखने की ताकत उन्हें खास बनाती है, और यही वो रास्ता है जिसके जरिए हमारी जो अभी जो नन्हे मुन्ने जो छोटे उस्ताद हैं ना, आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद और इन छोटे उस्तादों की हम बात कर रहे हैं आज। और बात जब हम छोटे उस्तादों की करते हैं तो उनके माता पिता से भी बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। माता पिता के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हर बच्चा अपने अंदर कोई ना कोई खास प्रतिभा लेकर आता है। जरूरी नहीं कि हर बच्चा केवल परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाकर ही सफल हो। दुनिया में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी अलग सोच और रुचि के दम पर पहचान बनाई। कल्पना चावला बचपन से ही आकाश और अंतरिक्ष के सपने देखती थी। उनके सपनों को परिवार और शिक्षकों का प्रोत्साहन मिला और वही बच्ची आगे चलकर अंतरिक्ष तक पहुंची। इसलिए बच्चों के सपनों को सुनना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देना बहुत जरूरी है।
1: प्लैटिनम रिकॉर्ड शहर टेक वन।

फिल्म रॉकस्टार से ये गीत आपने सुना मोहित चौहान और साथियों की आवाज में, और कमाल का गीत था। कमाल की वो फिल्म थी, कहीं ना कहीं वो फिल्म भी जो हमारी जिज्ञासा होती है, हमारा जो टैलेंट है उसको लेकर हम जब जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो कितनी चुनौतियां, कितनी रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों को पार करके जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो फिर पीछे मुड़कर देखते हैं तो जिंदगी जैसे कमाल की लगने लगती है। तो ये तो बात रही जिंदगी की उस आपाधापी की, उस संघर्ष की, जो हम सभी लोगों को जीवन में कभी ना कभी देखना पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे उस्तादों की, और बचपन से ही कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी का अगर हिस्सा बन जाए तो फिर धीरे धीरे चीज़ें सरल होने लगती हैं। छोटे उस्तादों के लिए पहली और सबसे बड़ी स्किल है जिज्ञासा और सीखने की आदत। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन बचपन से ही सवाल पूछते थे और प्रयोग करते रहते थे। उन्होंने हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी कोशिश जारी रखी और कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। इसलिए अगर कोई प्रयोग पहली बार में सफल ना हो तो निराश नहीं होना चाहिए, गलती भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और जब हम धीरे धीरे गलतियां कम कर देते हैं ना, तो फिर हम जो चाहते हैं बनना, जो पाना चाहते हैं उसकी तरफ जल्दी बढ़ने लगते हैं।

0: बिल्कुल दोस्तों, आशा जिंदगी में एक सकारात्मकता लेकर आती है। और ये देखना, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी कठिन हो, लेकिन जब हम ये हौसला रखते हैं, ये आशा अपने मन में रखते हैं कि हाँ ठीक है, हम धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते जाएंगे, और जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल तक पहुँचते जाते हैं। तो ये आशा होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
9: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल से दिल तक प्रोग्राम है छोटे उस्ताद। मैं हूँ आपके साथ राजेश और एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और दोस्तों, हम आज के इस छोटे उस्ताद में बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने छोटे उस्तादों को भविष्य के लिए तैयार करें। तो कुछ ऐसी स्किल्स की जरूरत होती है हमें जिंदगी में, जो जिंदगी भर हमारा साथ देती हैं, और अगर वो जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो फिर बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जिज्ञासा और सीखने की आदत के बारे में हमने बात की, और एक और ऐसी ही खास स्किल है रचनात्मक सोच, यानी कि क्रिएटिविटी। माता पिता बच्चों को केवल सही उत्तर याद करने के लिए नहीं, बल्कि नए सवाल सोचने के लिए भी प्रेरित करें। आज की दुनिया में ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम अपने आसपास देखें, वो लोग जो समस्याओं का समाधान खोजते हैं। सत्य नरेला ने भी सीखने वाली सोच और नई तकनीक को अपनाने की संस्कृति को महत्व दिया। बच्चों में भी यही आदत विकसित करनी होगी कि वो हर चीज को नए नजरिए से देखने की कोशिश करें। सवाल मन में आते हैं तो सवाल पूछें और सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। बच्चों को अगर अपने स्तर पर जवाब नहीं मिल पा रहा है तो पेरेंट्स भी उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करें, उस बच्चे की मानसिकता को समझें और जानें कि हमारे छोटे उस्तादों को किस तरह से उसका उत्तर मिलेगा। और आजकल तो उत्तर ढूंढने के तरीके भी बहुत सारे हो गए हैं। जब हम कोशिश करते हैं तो हर चीज का उत्तर हमें आसानी से मिलने लगा है।

दोस्तों कहते हैं कि जितने भी हम अपने आसपास देखें बदलाव होते हैं ना, जो हर तरह के बदलाव, उनको जितनी जल्दी हम समझ लें, जितनी जल्दी अपनी जिंदगी में उतार लें, उतना ही हमारा आने वाला कल जो है वो सुलझा हुआ हो जाता है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं। आज की दुनिया डिजिटल है, इसलिए हमें तकनीक का सही इस्तेमाल ज़रूर सीखना होगा, क्योंकि हम आज नहीं सीखेंगे, सोचेंगे कि हाँ ठीक है सीख लेंगे, लेकिन आने वाले कल में ना फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, और फिर हमें लगेगा कि तभी सीख लिया होता तो अच्छा था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसी चीज़ें भविष्य में हमारे जीवन का हिस्सा बनेंगी, और अब बन भी चुकी हैं, बन भी रही हैं। लेकिन तकनीक केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। भारत के ही कई स्कूली बच्चे आज छोटे छोटे ऐप बना रहे हैं, रोबोट तैयार कर रहे हैं और विज्ञान के नए प्रयोग कर रहे हैं। हमें भी मोबाइल और इंटरनेट को सीखने का साथी बनाना चाहिए, न कि सिर्फ समय बिताने का जरिया। और जब हम तकनीक के साथ कदम ताल मिलाकर चलते हैं ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम जो आज कठिन लगते हैं हमें कि कैसे जाए, वहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर बैठ के आराम से कुछ क्लिक्स में ही वो काम हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमारा हेजिटेशन होता है कुछ नया सीखने से पहले, जो हमारे अंदर होता है ना कि ज़रूरत भी है इसकी कि नहीं है, क्या करेंगे सीख के, ये चीज़ों को थोड़ा साइड में करना पड़ेगा। इनको जब हम साइड में कर देंगे और अपने अंदर हर नई चीज़ को सीखने की एक आदत विकसित कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी।

जी हाँ, ये यूं ही गाते चले जाएं और आप लगातार एफएम रेनबो पर एक से बढ़कर एक प्रोग्राम सुनते चले जाएं। तो अब समय है कि आपको बता दे कि अगले कुछ घंटों में आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे कुछ ही देर बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे प्रोग्राम जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, और इसमें आज का जो विषय है वो है दिनचर्या और ऋतुचर्या, डेली एंड सीजनल लाइफस्टाइल। इसमें एक्सपर्ट है आज के हमारे प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, इनसे बातचीत आप सुन पाएंगे इस प्रोग्राम में। और 4 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है रेनबो जीनियस, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बन पाएंगे रेनबो जीनियस। तो कुछ सवाल तो बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए, बस इंतजार है 4 बजने का, और उस प्रोग्राम में एक बार फिर मैं और आप होंगे एक दूसरे के साथ। और 5 बजे से आप सुन पाएंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, जिसमें शहर की तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों और क्या खास है, क्या खास चल रहा है और क्या आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है आपके लिए खास, वो सब आपको बताएंगे खुर्शीद आलम। और उसके बाद 6 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स, जिसे लेकर आप तक पहुंचेंगे हमारे साथी प्रणव सक्सेना। तो अगले कुछ घंटों में प्रोग्राम जो आप सुनने वाले हैं वो तो हमने आपको बता दिए, लेकिन अपने ये जो छोटे उस्तादों की हम बात कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। कई बार क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजें जब हम नहीं सिखाते हैं तो बच्चे उस वक्त ऐसा लगता है कि उनको वो हमें ऐसा जता रहे हैं कि उनकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन बच्चे भी जो है उस बात को बाद में गौर करते हैं, उनको लगता है कि हाँ वो चीज़ हमें सीखनी चाहिए। बस ज़रूरत है हमें बच्चे को समझने की, और इन छोटे उस्तादों को अगर नाराज़ हैं तो थोड़ा सा मनाने की भी ज़रूरत होती है। और प्यार से जब हम मनाते हैं ना तो ये बच्चे जो है नाराज़ लगते हैं जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी मान भी जाते हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम का नाम है छोटे उस्ताद। मैं हूँ आपके साथ राजेश। और दोस्तों, घड़ी की सुई की तरफ जब मैं देख रहा हूँ तो घड़ी की सुई ये कह रही है कि 2:53 लगभग हो चुके हैं और ये समय है कि आपसे कुछ और बातें करें और एक और गीत आप तक पहुंचाए। और बात हम आज छोटे उस्ताद में कर रहे हैं कि कैसे हम अपने इन छोटे उस्तादों को फ्यूचर रेडी करें, कैसे भविष्य के लिए तैयार करें, क्या वो चीज़ें हैं जिन पर हमें खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों पर हमने बात की लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिन पर हमें बात करनी बहुत ज़रूरी है। और वो बात है कि बच्चों को जो संवाद कौशल है और भावनात्मक समझ है वो भी सीखने की बहुत ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकें, दूसरों को समझ सकें और असफलता से बिल्कुल भी घबराए नहीं। खेल की दुनिया में भी हम देखते हैं कि बड़े खिलाड़ी केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि अपने धैर्य से, अनुशासन से और सकारात्मक सोच से सफल होते हैं। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को तुलना के दबाव से दूर रहकर आत्मविश्वास उनका लगातार बढ़ाएं। तो छोटे उस्तादों, याद रखिए, भविष्य उन बच्चों का होगा जो हर दिन कुछ नया सीखेंगे, सवाल पूछेंगे और अपनी कल्पना को उड़ान देंगे। और माता पिता, आपका भरोसा और प्रोत्साहन बच्चों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। नंबर अच्छे होना अच्छी बात है लेकिन उससे भी जरूरी है अच्छा इंसान बनना, नई चीजें सीखना और चुनौतियों का सामना करना। तो इसी बात के साथ आप राजेश को दीजिए अनुमति, चलते चलते ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

0: का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी, बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
1: रुक जा बुद्धू।
2: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
0: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
2: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: FM Dragoban
2: 103 MHz
1: News, Music and Entertainment.
2: This is FM Dragoban
1: FM 103 MHz.

0: FM 드래곤 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: सलाम नमस्ते आदाब, आप सबका स्वागत है AIR FM ट्रैकपैन 103 मेगाहर्ट्ज हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम पुरानी फिल्मी गीत। पुरानी फिल्मी गीत के इस हसीन नगमे भरे कार्यक्रम में आपका फिर से मैं स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी आरजे टिया। ये जो गीत आज मैं इस कार्यक्रम में बजाने वाली हूँ, ये सिर्फ गीत सुने नहीं जाते, पर ये जो गीत है वो दिल को छू लेते हैं। दिल इन गीतों को, दिल इन शब्दों को महसूस कर लेता है। तो आइए यादों के इस खूबसूरत सफर को की शुरुआत करते हैं। और मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आई हूँ, पर पहले आप सबसे ये विनती करती हूँ, आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी कभी तो प्रोग्राम होनी ऐसे के लिए तो प्रोग्राम ना उपड़े, अपनी लगा दिन ना उपड़े कि बाइक ना लिखेगी ना पता हो के लिए 9436805333943683853 पे जरूर लिख के भेजिएगा। तो मैंने कहा था कि प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत ही बेहतरीन गीत से होगी, और ये गीत है तू है आसमां, तेरी है जमी, तेरी आसमां। और ये तो गाना आसे द बर्निंग ट्रेन। द बर्निंग ट्रेन तो 1980 रे रिलीज हुई। म्यूजिक दिशा आर डी बर्मन, लिरिक्स लिखे शाहिर लुधियानवी। और ये तो गीत के आवाज दिशे पद्मिनी कोलापुरी और सुषमा श्रेष्ठा। तो पद्मिनी कोलापुरी तो अपनी खान सब जन

She was a very well-known actress, but yes, ताय इतु फिल्म ते इतु गाना ते ताय आवाज़ भी दीशे, तो ये गीत तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये गीत ये कार्यक्रम अच्छा लगेगा.

सो माई डियर लिसनर्स, अपना कानूनी तेजे तेरी है जमी तेरा आसमा फ्रॉम द मूवी द बर्निंग ट्रेन. अ सॉन्ग अबाउट डिवोशन, अ सॉन्ग अबाउट डेस्परेशन ही कोई दो ऐसा गीत जो साहिर लुधवानी जी ने और आर डी बर्मन के संगीत है. साहिर लुधवानी जी के बहुत ही गहरे गहरे बोल थे. तो ये गाना एक तब कुआ निशना, इट्स साउंड ऑफ डेस्परेशन, प्रार्थना कुरा निशना एक गाना से. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा. तो जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं हम, प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अगला गीत जो है ये भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. इतु असे मोहम्मद रफी ब्राकुरेला गीत, म्यूजिक दिशे जयदेव और लिरिक तो वंस अगेन साहिर लुधवानवी. ताई प्राई लिखी से ही वाइज अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्सेटाइल लिरिसिस्ट. ताई लगा ऑफकोर्स ही इज अ लिरिसिस्ट, तो ताई लगा फोकस तो मोस्टली लिरिस्ट थके, बट यू नो सॉन्ग्स खान दो हूँ बोले ट्यून खान बीच बाल हो ले. You enjoy certain songs, but for a song to be immortalized, for a song to transfer or to, you know, transform into a classic, lyrics to be bishi thage. So next gidi bole thage, to hum dono laga film badiye se main zindagi ke saath.

हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो यस डियर लिसनर्स, जिंदगी में बहुत सारे फिक्र है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स ऐसे हुई भी। आई थिंक वन ऑफ द मेजर स्ट्रगल्स दैट मोई खान सब एक्सपीरियंस कर रहे, यू नो, प्रेशर फ्रॉम सोसाइटी, प्रेशर फ्रॉम समाज ही कह लो। बट येस, द नेक्स्ट गीत दैट आई एम गोइंग टू प्ले आउट फॉर यू इज अ पर्सनल पर्सनल फेवरेट। हर बार मैं ये गीत सुनती हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। तो इट वॉज फ्रॉम द मूवी अमर प्रेम 1972। तो इतना मान था गया से 2026 एंड 1972 लगा गाना तो इतना भी सो रेलिवेंट है से। तो ये गाना के लिरिक्स लाजवाब लिरिक्स ही कोई दो बोल लिखे है नन अदर देन आनंद बख्शी साहब ने, अजी बर्मन लगा म्यूजिक असे। एंड इतु गीत हम सबको एक बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल, बहुत ही नॉर्मल, बट एक चीज याद दिला देता है दैट इज सो सिग्निफिकेंट कि दुनिया कुछ ना कुछ तो जरूर कहेगी। इसलिए दूसरों की बातों को ज्यादा दिल पे ना लगाइए, दिल की अपनी दिल की बात सुनिए, क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिलती है। तो इस जिंदगी को अच्छी तरह से, पूरी तरह से अपने हिसाब से जीने दीजिए। कुनाई तो ऐसे ही तो गाना लगा मीनिंग। तो सो यस, नन अदर देन किशोर कुमार लगा दिलकश आवाज में ये गीत आज भी उतना पसंद किया जाता है जितना यू नो फर्स्ट टाइम इतु गाना रिलीज हुआ था। हम दे एंजॉय कृषि सो क्वान 1972 लाख गाना से, बट सो रेलिवेंट। सो आई होप यू विल एंजॉय। दिस इज कुछ तो लोग कहेंगे फ्रॉम द मूवी अमर प्रेम, किशोर कुमार की आवाज में।

Well, dear listeners, आपने कहा होनी चाहिए द वेरी वेरी क्लासिक सॉन्ग अजीब दास्ता है ये फ्रॉम द मूवी दिल अपना और प्रीत पराई और इतना नेक्स्ट गीत दी बोले था याद हो किस लिए फ्रॉम द मूवी

अरे मेरा भी सुंदर साजन था, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी, बिजली की तरह नाच।

0: urged the government to issue clear directives prohibiting coercion during the census, ensure that enumeration is conducted strictly as per legal provisions, and prevent essential services such as ration cards and residential certificates from being linked to the place of census registration. The CNTC said prompt government intervention would uphold justice, equality and inter-tribal harmony in the state. Kargil Vijay Diwas was observed today across the country to honor the bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during the Kargil War of 1999. The day marks the 27th anniversary of India's victory over Pakistan in the conflict and the successful conclusion of Operation Vijay. During this operation, the Indian Armed Forces reclaimed territories in the Kargil district of Jammu and Kashmir that had been infiltrated by Pakistani soldiers and militants. On the occasion, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Lok Sabha Speaker Om Birla paid tributes to the brave soldiers who laid down their lives in defense of the motherland. In a social media post, President Murmu said, "The unparalleled valor, unwavering resolve and supreme patriotism of the soldiers exemplify the finest traditions of the Indian Armed Forces." Prime Minister Narendra Modi remembered the brave hearts of the nation today on the occasion of Kargil Vijay Diwas, stating that India is continuously scaling new heights, be it defense production, defense exports or political cooperation with friendly nations. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on Akashvani, Mr. Modi said, "Today, the 26th of July, is a date that does not require a calendar to be remembered, as Kargil Vijay Diwas is being celebrated today."
1: कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said, "Every Indian is cheering for the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago." The Prime Minister also spoke about Science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
1: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता, यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
0: On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. The Prime Minister urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local. The Prime Minister also mentioned khadi, saying that khadi was very dear to Mahatma Gandhi.
1: सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोक

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में

0: सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन निलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
3: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री यमुनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलो बॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
5: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंजीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
6: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और

0: ओडिशा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से ओडिशा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगत सिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगत सिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi announces setting up of high-powered task force on examination reforms to be headed by technology expert Nandan Nilekani. New law to be introduced in Parliament tomorrow to deal with examination irregularities. Union Minister Prahlad Joshi assumes charge of Education Ministry. Nation salutes indomitable courage and supreme sacrifice of its soldiers on Kargil Vijay Diwas. Prime Minister Modi urges citizens to honour Kargil war martyrs and strengthen the resolve to build secure, capable and self-reliant India. Defence Minister Rajnath Singh reiterates no talks with Islamabad other than that for return of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. In weightlifting, India's Mirabai Chanu wins gold in the women's 48-kilogram event and Rishikant Singh Chanambang bags silver in the men's 60-kilogram category at Commonwealth Games. And in men's cricket, India beat Zimbabwe by 35 runs in the third T20 match to win the series 3-0 in Harare. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms headed by renowned technology expert Nandan Nilekani. The task force will also consist of former IB director Tapan Deka, former ISRO chairman S. Somanath, IIT Chennai director V. Kamakoti, besides former education secretary Anita Karwal and logistics expert Amrit Lal Meena are also part of the task force. In a video message, Mr. Modi said the task force will focus on strengthening the examination system and based on its recommendations, necessary steps will be taken at the earliest to ensure the credibility of future examinations. The Prime Minister added that the government is also moving towards introducing a new law in Parliament tomorrow with stringent provisions to deal with examination-related irregularities. Mr. Modi reaffirmed the government's commitment to protecting the integrity of competitive examinations and safeguarding the future of millions of students.
3: हम कल पार्लियामेंट के अंदर कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है। जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा।

0: Dragoban.
1: 103
0: MHz. News, music, and entertainment.
1: This is FM Dragoban.
0: FM 103 MHz.
2: Welcome back, dear listeners. आप सबका फिर से स्वागत है AIRFM Dragoban 103 MHz हिंदी फिल्म सॉन्ग्स प्रोग्राम RJ's Choice है. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त RJ टिया, और आप सबका स्वागत करती हूँ RJ's Choice कार्यक्रम में, जहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चुनिंदा पावरफुल ट्रैक्स. यस डियर लिसनर्स, आज ही गाना खंडो एकदम पावरफुल, एकदम इंस्पिरेशनल हो. ऐसे दो वी ओनली हैव 25 मिनट्स, बट आई एम प्रोमिसिंग यू दैट इट नेक्स्ट 25 minutes se apni han ke what the kind of inspiration that you need, especially when you start your week. Kali if you hours the week nutun hafta to shuru ho jawale ase to week start kore we need that extra boost. So I hope that the songs will give you that extra power, extra dose of energy. So yes, the adila gana khando bishi kwan nishna inspirational songs kani ase, inspirational tracks kani ase, kyunki kuch gaane sunne ke liye hote hain aur kuch gaane hame mehsoos karate hain, hamare andar ek hausla dilate hain, hamare sapno ke piche bhagne ke liye hame sikhate hain aur hame wo jazba dete hain. To thoda volume ko uncha kijiye, do raati hui jaise raati de do ghumawale time hui jaise, but main umeed karti hu aap thoda volume ko uthayenge, thoda bharayenge, kyunki aaj ka playlist sirf music hi nahi, ek jazba. तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम में. और प्रोग्राम थे फर्स्ट गीत दिए से वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी, मूवी भी पिछली बार से रंग दे बसंती. आई थिंक अ लॉट ऑफ अस हैव वॉच्ड दिस मूवी, दैट वाज एन इमोशनल रोलर कोस्टर. द मूवी साइशे को लिए 2006 लगा से मोहित चौहान लगा आवाज ऐसे, ए आर रहमान लगा म्यूजिक, एंड प्रसून जोशी लगा लिरिक्स ऐसे. तो तादेरा कनागन पिछली बार बल से तो पूरा एल्बम इज स्पेक्टेकुलर, पूरा एल्बम इज epic. But yeah, this is one song that I really love to listen slow, I say, but it will definitely give you the right charge.

0: Well, my dear listeners, आपने कहानी तक चुनार from the movie A B C D और इसी गीत के साथ आजीलागा प्रोग्राम और आजीलागा ट्रांसमिशन भी रैप्ड अप करोले टाइम पहुंची जैसे कल 6 बजे फिर मिलेंगे. तब तक के लिए अपना ख्याल रख ले, हौसला हाई रखिए और थोड़ा दिल को जिद्दी रखिए, क्योंकि सपने वही पूरे होते हैं जिन्हें आप जिद पकड़ के पकड़े रहते हैं. तो मैं हूँ आपकी आरजे टिया. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर योर लवली मैसेजेस एंड ऑफ कोर्स फॉर कीपिंग मी कंपनी. कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट एंड सी यू टुमारो.
1: FM Dragoban
2: 103 MHz.
1: News, music and entertainment.
2: This is FM Dragoban.
1: FM 103 MHz.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे।